चलचित्र दिल है कि मान्त नहीं को गीत सुन्नुभयो श्रोताहरु अनुराधा पौडवाल को आवाज में गीत को बोल थियो दिल है कि मान्त नहीं हजुर यो गीत पश्चात अब अर्को गीत छ नारायण गोपाल को आवाज में रहेको गीत को बोल छ म कसरी भन्नु यो माया हो न तिमी मेरी न म तिम्रो हजुर श्रोताहरु स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई अब भने हामी स्वागत गरिहालौं